और अपनी याददाश्त को बचाकर भी जिंदा रहती है। आज मगरबी किनारे का दिल इन दोनों शहरों के दरमियान धड़क रहा है, एक जिंदगी का जश्न मना रहा है, दूसरा जिंदगी का दिफा कर रहा है। और जब ये दो कहानियां मिलती हैं तो हमारे सामने सिर्फ एक जुग्राफिया नहीं बल्कि सब्र, वक़ार और एक ना ख़त्म होने वाले इंतज़ार की कहानी आती है, क्योंकि फ़िलिस्तीन में आज़ादी का रास्ता कभी किसी नज़म के अंदर से गुज़रता है और कभी मुहासरे में घिरी किसी गली के बीच से। और फ़िलिस्तीन की यह ना ख़त्म होने वाली कहानी ठीक उन्हीं दो रास्तों के मिलाप पर सांस ले रही है। आइंदा हफ्ते तक अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।

करोड़ों की तादाद में बच्चे रोजाना सोशल मीडिया पर घंटों खर्च करते हैं। क्या ये प्लेटफॉर्म इनके तहफ्फुज के लिए बनाए गए थे या उनसे फायदा उठाने के लिए? ऑस्ट्रेलियंस पर पाबंदी आयद कर दी है। चीन ने एक घंटे की हद मुकर्रर की है। तुर्की अजिम में कार्रवाई कर रहा है। तो इन नुकसान की कीमत कौन अदा करेगा, वालदेन या डिजिटल प्लेटफॉर्म्स? आइए मिलकर जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सामीन, आज का मौजू टीआरटी वर्ल्ड पर नष्ट होने वाले एमरे यिलांजिक के एक मजमून से माखूज है। हम डिजिटल दुनिया में बच्चों को दरपेश खतरात, इस मसले का जिम्मेदार कौन है के बारे में बात करेंगे। चूंकि दुनिया भर की हुकूमतें बच्चों के सोशल मीडिया के इस्तेमाल को कंट्रोल करती हैं, जिम्मेदारी वालदेन से डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की तरफ मुंतकिल हो रही है। ऑस्ट्रेलिया और बरतानिया से लेकर नार्वे और तुर्की तक बहुत से मुल्क एक ही नुक्ते पर मुत्तफिक हैं। बच्चों के सोशल मीडिया के इस्तेमाल से उन्हें नुकसान को सिर्फ वालदेन की निगरानी से नहीं रोका जा सकता। ये ऑनलाइन माहौल की डिजाइनिंग, इंतजाम, इससे मुनाफा हासिल करने वालों की बराबर की जिम्मेदारी होनी चाहिए। बच्चे सिर्फ सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करते, प्लेटफॉर्म्स मुसलसल को रुख देते हैं, हौसला अफजाई करते हैं, खुद में मसरूफ रखते हैं। लामहदूद स्क्रोलिंग, अल्गोरिथमिक तजवीजी निजाम और इनाम के चक्कर कस्ती तौर पर मईशत को बरकरार रखने के लिए वसा किए गए हैं। वालदेन से तो रखना कि वो खुद इन ट्रिलियन डॉलर की मशीनों का मुकाबला करें तो ना ये हकीकत पसंदाना है और ना ही मनसफाना। तहकीकात में सोशल मीडिया के ज्यादा इस्तेमाल बच्चों में बेचैनी, डिप्रेशन, बेख्वाबी के मसाइल, तवज्जो की कमी, खुराक देने की खराबी के दरमियान गहरा ताल्लुक जाहिर हुआ है। शोशनासबोफ की सरमायादारी निगरानी के तस्वीर के मुताबिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म साफ के रवैये का जायजा लेते हैं, मुस्तकबिल के इकदाम की पेशन गोई करते हैं और हदफी इश्तहार के जरिए इससे रकूम कमाते हैं। इस निजाम बच्चे न सिर्फ कमजोर सार्फिना बल्कि डाटा के कीमती असासे भी हैं। अल्गोरिथमिक न सिर्फ ये जांच करते हैं कि बच्चे क्या पसंद करते हैं बल्कि बैक वक्त वो आगे जाकर किस चीज की तमन्ना करेंगे को भी सांचे में डालते हैं। लिहाजा मौजूदा स्वाबत का मकसद बच्चों से डेटा इकट्ठा करने पर पाबंदियां लगाना, हदफ इश्तहार पर पाबंदी, तजावीज निजाम शफाफियत लाने, तामुल को ज्यादा से ज्यादा बनाने वाले तामीराती डिजाइन पर पाबंदी लगाना है।

0: ये खबरें सदाए तुर्की की उर्दू सर्विस से पेश की जा रही हैं।
1: अमरीकी युवान नुमाइंदगान ने अमरीकी फौज को ईरान जंग से निकालने पर मबनी करारदाद मंजूर कर ली है। अमरीकी युवान नुमाइंदगान ने अमरीकी फौज को ईरान के साथ झड़पों से निकालने के मुतालबे पर मबनी करारदाद की मंजूरी दे दी है। ईवान ने करारदाद को 215 के मुकाबले में 208 वोटों से मंजूर कर लिया है। करारदाद डेमोक्रेटिक नुमाइंदे ग्रीगोरी मैक्स ने पेश की और इसे ट्रंप इंतजामिया की ईरान में गैरकानूनी और महंगी जंग की दोनों अहम सियासी पार्टियों की तरफ से मुश्तरक मुसम्मत करार दिया है। मैक्स ने कहा है कि जंग अपने बयान करदा मकासद को हासिल करने में नाकाम रही है।
2: ईरान की वजारत खारजा ने गुज़श्त रोज़ अमरीका पर इल्ज़ाम लगाया है कि उसने कुवैत और बहरीन में कायम अपने फौजी अड्डों से आबनाए हुरमज़ में ईरान के एक ऑयल टैंकर और जजीरा किशम पर एक मवासलाती टावर पर हमले किए हैं। नीम सरकारी खबर रसा इदारे फारस की जानब से जारी करदा एक बयान में वजारत खारजा ने टैंकर और मवासलाती तनसीब पर दहशतगर्द अमरीकी फ़ौज के जारहाना इकदाम की शदीद मजम्मत की है। वजारत खारजा का कहना है कि हमले गुज़श्त रोज़ सुबह खित्ते के दो ममालिक से किए गए जिसके बाद उन्होंने कुवैत और बहरीन का नाम लिया। वजारत ने वाशिंगटन पर इल्ज़ाम लगाया कि वह ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाइयाँ करने के लिए इलाकई ममालिक की सरजमीन और सहूलियात का इस्तेमाल कर रहा है। बयान में कहा गया है कि कुवैत और बहरीन की हुकूमतें इन हमलों की बराह रास्त और वाज जिम्मेदार हैं। उमर खारजा के मुताबिक ये हमले 8 अप्रैल की जंगबंदी की खिलाफ वर्जी और बैन अवी कानून और अकवा मुतहदा के मंशूर के आर्टिकल 2/4 की खिलाफ वर्जी हैं जो रियासतों की इलाकाई सालमियत या सियासी आज़ादी के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल को ममनू करार देता है। बयान में मजीद कहा गया है कि कोई भी ऐसा मुल्क जो जहरे फरीकैन को अपनी ज़मीन समंदर फ़िज़ाए हदूद या अपनी सरजमीन पर वाक़ सहूलियात और अड्डों को ईरान के खिलाफ फौजी जारहियत करने या उसकी हिमायत करने के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त देता है वो बैन अवी कानून के बुनियादी असूलों और हुस्न जवार की खुली खिलाफ वर्जी कर रहा है। वजारत ने कहा कि अकवा मुतहदा की जनरल असम्बली की करारदाद 3314 के तहत इस तरह के तर्ज अमल को ईरान के खिलाफ जारहियत का इकदाम तसव्वुर किया जाता है।
1: अमरीका की ट्रंप इंतजामिया की जानब से लातिनी अमरीका में मंशियात स्मगलरों के खिलाफ कई माह से जारी मुहिम के तहत अमरीकी फौज ने मशरकी बहरुल काहल में मंशियात की स्मगलिंग के इल्जाम में एक कश्ती को निशाना बनाया जिसके नतीजे में 2 अफराद हलाक हो गए हैं। बुध के रोज होने वाला यह ताज़ा हमला अमरीकी इंतजामिया की तरफ से सितम्बर के आगाज में नार्को दहशतगर्द करार दिए गए अफराद के खिलाफ जारी कार्रवाईओं का हिस्सा है। इसके बाद से कश्तियों पर किए गए हमलों में हलाक होने वालों की तादाद कम अज कम 207 तक पहुंच गई है। मशरकी बहरुल काहल और बहेरा कैरेबियन में होने वाले हमलों के बारे में फौज के बेशतर बयानात की तरह इस बार भी अमरीकी जनूबी कमान ने कहा है कि हमने मंशियात की स्मगलिंग के मारूफ रास्तों पर सफर करते मुश्तबा स्मगलरों को निशाना बनाया है। एक्स से शाया होने वाली एक वीडियो में एक कश्ती को पानी पर तेजी से हरकत करते और फिर शोलों की लपेट में आते दिखाया गया है। जनूबी कमान ने एक्स पर जारी बयान में कहा है कि इंटेलिजेंस मालूम ने तस्दीक की है कि यह कश्ती मशरक़ी बहरुल काहल में मंशियात की स्मगलिंग के मारूफ रास्तों पर सफर कर रही थी और मंशियात स्मगलिंग में मुलव्वस थी। ऑपरेशन के दौरान 2 नार्को दहशतगर्द हलाक हो गए हैं और किसी भी अमरीकी फौजी को नुकसान नहीं पहुंचा।
2: लंदन में तैनात रूसी सफीर आंद्रे किलिन को यूक्रेन पर रूस के हालिया हमलों और रोमानिया में एक रिहायशी इमारत पर रूसी साख्ता ड्रोन गिरने की वजह से बरतानवी वजारत खारजा में तलब कर लिया गया। बरतानवी वजारत खारजा के तर्जुमान के मुताबिक 29 मई बरोज जुमे को एक रूसी ड्रोन की जानब से नेटो की फिजाई हदूद की खिलाफ वर्जी करते हुए रोमानिया में शहरी आबादी को निशाना बनाने के वाक़े को नाकाबिल कबूल करार दिया गया है। वजारत में तलब किया गया रूसी सफीर को पैगाम दिया गया कि कशीदगी में इस संगीन इजाफे के सख्त अल्फाज में मजम्मत की जाती है। बरतानवी हुकाम ने हम नेटो की सरजमीन के एक एक इंच का दिफा करेंगे का पैगाम देते हुए इस बात पर जोर दिया कि रूस ने इंसानी जानों के तकद्दस को वाज़ेह तौर पर पसे पुश्त डाल दिया है। रोमानिया के हुकाम ने ऐलान किया था कि मजकूरा ड्रोन गिरने के नतीजे में 2 अफराद जख्मी हुए हैं।
1: क्रीमिया पर यूक्रेनी हमले के नतीजे में 3 अफराद हलाक हो गए हैं। रूस के हलाक करदा इलाके क्रीमिया में मुकर्रा सरबराह सरगेई एक्सिनोव ने टेलीग्राम से जारी करदा बयान में कहा है कि सेमिफोर पोल में गैर रिहायशी तनसीबात पर दुश्मन के हमले के नतीजे में इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक 3 अफराद हलाक और 7 जख्मी हो गए हैं। एक्सियोनोव ने चंद घंटों बाद एक और बयान में कहा है कि यूक्रेनी ड्रोन इलाके से गुजरती एक मुसाफिर ट्रेन से टकरा गए हैं। उन्होंने कहा है कि अजोफिस्के से केरिच जाने वाली एक मुसाफाती ट्रेन पर दुश्मन के ड्रोन हमले के नतीजे में 1 शख्स हलाक और 3 अफराद जख्मी हो गए हैं। हंगामी इमदादी और ऑपरेशनल टीमें मौका पर हैं और इमदादी कार्रवाइयां जारी रखे हुए हैं।
2: چلی کی اسٹوڈنٹ کنفیڈریشن کی جانب سے بلائی گئی ایک بڑی احتجاجی ریلی کے دوران بدھ کے روز ہزاروں طلبہ نے دارالحکومت سانتیاگو کے وسطی علاقے کا رخ کیا، جہاں انہوں نے صدر ہوزے انتونیو کاسٹ کی کفایت شعاری کی پالیسیوں کے خلاف شدید احتجاج کیا۔ بڑے پیمانے پر شروع ہونے والا یہ پرامن مظاہرہ بعد میں سیکیورٹی فورسز کے ساتھ پرتشدد جھڑپوں میں تبدیل ہو گیا، جس کے نتیجے میں 12 پولیس اہلکاروں سمیت کم از کم 25 افراد زخمی ہوئے۔ مقامی رپورٹس کے مطابق یہ جھڑپیں اس وقت شدید ہوئیں جب مظاہرین نے پولیس پر پتھراؤ کیا اور لاٹھیوں کا استعمال کیا، جس سے عوامی املاک کو نقصان پہنچا، جس کے جواب میں پولیس نے ہجوم کو منتشر کرنے کے لیے کارروائی کی۔ اس ہنگامہ آرائی کی وجہ سے وسطی سانتیاگو کے کئی میٹرو اسٹیشنز کو عارضی طور پر بند کرنا پڑا اور پورے دارالحکومت میں ٹریفک کا نظام شدید متاثر ہوا۔ یہ مظاہرے صدر ہوزے کاسٹ کے اس وسیع مالیاتی منصوبے کے خلاف کیے جا رہے ہیں، جس کا ہدف اگلے 18 مہینوں میں عوامی اخراجات میں تقریباً 6 ارب ڈالر کی کٹوتی کرنا ہے۔
1: ترکی کی قومی فٹ بال ٹیم نے فلوریڈا کے شہر فورٹ لارڈریڈیل میں واقع فلوریڈا بلو ٹریننگ سینٹر میں اپنا پہلا تربیتی سیشن مکمل کر کے فیفا ورلڈ کپ کی تیاریوں کا آغاز کر دیا ہے۔ ٹیم نے ہیڈ کوچ وینسنس مونٹیلا کی قیادت میں تربیتی سرگرمیوں کا آغاز کیا۔ مونٹیلا نے منگل کے روز ورلڈ کپ کے لیے اپنی ٹیم کا اعلان کیا۔ ٹیم کے نمایاں کھلاڑیوں میں خاقان چولہان اولو، آردا گلیر، کرم آک ترک اولو اور بارش آلپر یلماز شامل ہیں۔ ترکی کی قومی ٹیم 6 جون کو وینزویلا کے خلاف ورلڈ کپ کی تیاریوں کے سلسلے میں انٹر میامی سی ایف اسٹیڈیم میں ایک بین الاقوامی دوستانہ میچ کھیلے گی۔ وینزویلا کے خلاف میچ کے بعد ترکی قومی ٹیم اپنی توجہ ورلڈ کپ کے گروپ ڈی کے مقابلوں پر مرکوز کرے گی۔ ٹیم 13 جون کو آسٹریلیا، 20 جون کو پیراگوئے اور 26 جون کو میزبان امریکہ کے مقابل میدان میں اترے گی۔ گروپ ڈی کی دیگر ٹیموں کے برعکس ترکی نے اپنا مرکزی کیمپ ریاست اریزونا کے 24 کثیر المقاصد تربیتی میدانوں والے شہر میسا میں قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ فیفا ورلڈ کپ 2026 امریکہ، میکسیکو اور کینیڈا کی مشترکہ میزبانی میں 11 جون کو شروع ہوگا اور 19 جولائی تک جاری رہے گا۔ ٹورنامنٹ میں 48 ممالک شرکت کریں گے۔ صدائے ترکی سے خبریں ختم ہوئیں۔

एनर्जी कॉरिडोर्स को कंट्रोल करना चाहती हैं, बल्कि ट्रांसपोर्टेशन के बुनियादी ढांचे को भी कंट्रोल करना चाहती हैं, जो आलमी मकबूल सकाफत रोजमर्रा की जिंदगी की सबसे बड़ी शरियान है।

शोरिंग या नियर शोरिंग नुकता नजर ले रहा है। कंपनियां अब अपनी सप्लाई चेन को इन इलाकों में मुंतकिल कर रही हैं जो जोग्राफी तौर पर इनके करीब हैं और सियासी तौर पर कम खतरे के हामिल हैं। आलमी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री पैदावारियत पर मरकूज लॉजिस्टिक मॉडल से मुहाफाजत इस्तेकाम पर मरकूज एक नए जियो इकोनॉमिक मॉडल की तरफ मुंतकिल हो रही है। ताहम ये वसीब मानी की तेज रफ्तार तरक्की अपने साथ संगीन मालियाती साथ खतरात भी ला रही है। रेगुलेटर्स और प्रोड्यूसर्स जो बरसों से आजाद मंडी आजाद तजारती नुकता नजर के साथ काम करते थे, अब इन बेकाबू लागत में इजाफे पाबंदियों के नतज का सामना कर रहे हैं। यहाँ माली इंतजार का खतरा भी पेश पेश है। अगर हम एक बैटरी पैदा करिंदा चिप फ्राहम करना जोग्राफी सियासी बहरान की वजह से काम बंद कर देता है तो ये डोमिनो असर को मुतहरिक कर सकता है जिससे दुनिया भर में दर्जनों मोटरसाज फैक्ट्रियां हजारों जेली मैन्युफैक्चरर्स बंद हो सकते हैं। इस शो में अचानक तब्दीली से इंजन के रवायती पुर्जे तैयार करने वाले हजारों छोटे कारोबारों के दिवालिया होने का खतरा है जो इस चीज को बर्दाश्त करने की सकत नहीं रखते। इन सब के नतीजे में बेरोजगारी उरूज पर पहुंच जाएगी। तो ये नई सरमायाकारी की हिकमत अमली कितनी पायदार काबिल इत्तमाद है, हमें यहाँ पर हम आहंगी के म्यार पर भी सवाल उठाना चाहिए। माजी में किसी एक फ्राहम करिंदा या किसी एक मुल्क पर इंहसार करने के भारी अखराजात ऑटोमोबाइल फर्मों की निगरानी के खिलाफ स्ट्रेटेजिक अंधापन को बेनकाब करते हैं। सरमायाकारी का माहौल फिलहाल इलेक्ट्रिक और खुद मुख्तार गाड़ियों के बारे में काफी पुरजोश दिखाई देता है। हम सार्फीन मकानी माशरे अचानक मुंतकली की वजह से होने वाले ज्यादा अखराजात न काफी इंफ्रास्ट्रक्चर से पूरी तरह खुश नहीं है। यूरोप में कुछ कायमशुदा ट्रेड यूनियंस लेबर यूनियन के रहनुमा दूर दराज के जोग्राफियों या सॉफ्टवेयर पर मबनी नए तश्कील शुदा कंसोर्शियम में पैदावार की तेजी से मुंतकली के बारे में गहरी तशवीश रखते हैं। इसकी वजह यह है कि रवायती सनत के बरक्स इस नए तकनीकी सरमायाकारी ग्रुपों के लिए पैदावारी तनसीबात माशरती वरसा या रोजगार का जरिया नहीं है बल्कि वो डिजिटल असासे हैं जिनसे मुनाफे के अमल के जरिए इस खेल से बाहर हो जाएंगे। सामिन आज हमने हरे मैदानों से सड़कों तक फैलने वाली फैक्ट्रियों की प्रोडक्शन लाइंस के किस तरह एक जड़ी जोग्राफी मीशत की तजर्बाकार की माहिर इख्तियार करने का जायजा लिया है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री अब सिर्फ इंजन की ताकत आराम और आयश से ताल्लुक नहीं रखती। ये नायाब जमीनी अनासर सॉफ्टवेयर का गलबेस फारती चालबों आलमी तजारती जंगों का मजबू है। सप्लाई चेन में ये बुनियादी तब्दीली रुकावट रवायती सनती इदारों जवाबत को मतरूक करने की सलाहियत रखती है। अगर खाम माल या टेक्नोलॉजी का छोटा सा कंसोर्शियम आलमी जो बैटरी नेटवर्क को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल करना शुरू कर देता है तो खेल के असूल अब आजाद मंडी की मईशत नहीं बल्कि इन अजारा तारियों इनके पीछे बड़ी ताकतों के जरिए तय किए जाएंगे। डिजिटल आलमी दौर से लाख खतरा की तरह सनती दुनिया ने अपने नई ताकत के मुहरकात कमजोरियों को जन्म दिया है। साम इसके साथ हमारा आज का सिलसिला प्रोग्राम इख्तिताम पसीर होता है। आइंदा हफ्ते दोबारा पेश खिदमत होंगे, तब तक के लिए अपने मेजबान इमरान अब्दुल को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। जुग्राफियाई मईशत।